0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शीतल की बर्थडे पर यहां आकर इस पार्टी की रौनक बढ़ाई।
1: पार्टी में रौनक तो जरूर है, लेकिन कुछ फीकी सी है। कहो तो मैं
0: इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। किसी ने कहा है, जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर।
2: वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूब। लेकिन अंकल,
1: जीवन बिना मीत के और शायरी बिना संगीत के किस काम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शेर में संगीत भर दूं।
0: जरूर जरूर, क्यों नहीं।
1: थैंक यू सर, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके।

0: क्या बात है माजी?
1: कुछ नहीं, जिसे तुम मिलने आया वो घर पे नहीं बेटा।
0: लेकिन आप,
2: हेलो रहीम, कैसी हो मां?
1: तेरा दोस्त आ गया।
0: मां क्या बात है यार, माजी इतनी परेशान क्यों है?
2: क्या बताऊं, बचपन में मेरा छोटा भाई खो गया था। जब जब उसकी याद आती है मां रोने लगती है।
0: क्या उसे ढूंढा नहीं?
2: बहुत ढूंढा, कहां कहां नहीं गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तू अपना हिस्सा लेने आया है ना?
0: हिस्सा तो मैं कभी भी ले लूंगा, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी मां का रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी, आपको अपना खोया हुआ बेटा चाहिए ना?
1: हाँ बेटा।
0: मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये मेरा ईमान है। आप चलेंगे मेरे साथ?
1: अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं।